0: कीड़ों के भी आएंगे, मगर ये भी
1: दे मथा कंडा म फुगा हर मकर विवाह में फुगा तो कंडा भी फुगा
0: बकरी बकरी रही।

0: fighting him.
1: खाना आया था ना
2: मर
1: दबोर हाथ आने तो आ जाता पंजा लेंगे खाने इंदी तो कोई मौरी भी लगने ऐ अरे कसम

इतिहास प्रमाणे कच्छ चोकर है मालधारी वतन, वो खीड़ू है बई थी हुई उद्योग रोगा जो जमीनों जिना रही है माल बेचारा भेजे क्या

0: ஆ கேர் வா பண்ட
1: பட்டல் பட்டல்
0: பட்டல் வர சாய் வா பிந்தா
1: மால் கட்டா ரக்கி
0: கொரு கொரு மால் போத்ர பாயன் ஜுவே ஜி ஆஜி ஜமீன் கி ஹே ஜே डुकार और बापा ये वाड़ी में ही केदा वाड़ थी केदा की थी तड़े डी वलाई थी बाहर जंगल में निकले एकड़ी की भाजी बने थी नती की खाते जो मिले
2: घटी बंद के जड़ी का वास्तु जे तड़े जड़ जड़ बड़ा
3: कितने हांडी है बच्चा
0: से हांडी 70 कन जे बा
3: आतले है ही
0: हो
3: तो लगता ना थी ते एवड़ा से
1: वो तो अलग अलग धन भरो ना आले
0: ये तुम्हारी
1: આ બીજા ભાઈની
3: ઉ એડા વાવ્યા ને ઓળે ઈ બીજા ભાઈની આ મારા મોટા સસરાની તમ બેઠા
1: આ આપણી જમીન છે
3: આપણી છે
1: આ અહીંથ કરીને એ બધો અંદર બધી આપણી છે
3: પેલા બહુ અહીંયા આવતા નીકળવાળા હવે આ તો વરસાદ નથી પડતો એટલે આ બધું ઓછા આવે તો આ છોટું આખો દી ભેગો જ ફરે
0: હોય
3: ભણવા નથી જતો
0: ભણવા નથી જતો બે
3: હા
0: તો લુઈ ચાલ ન કરે
3: બાપા ને ઘોડે ઊંટ ચરાવવા પડે

0: पेट पण धणी वेचारा मेहनत करी था नैन में धणी वटे असा एवर आई मंजन इन वारे में 40-50 हज़ार जी दवाई कई है माल जी छता माल जी दसो ताई परी सीधी है
1: हनी लाखोरी काचल रही वही ने लाखोरी हनी अने विचारे ने वेसा पे खणी हिंद घेट न वडा मनु में वे कासल था कड़ो हजार आतार में निकरो था हन
2: ओहो वी तो अड़ी तपावा तो हिंदी के कड़ो कड़ो मत के ओइल जो ने दवा जो अच्छी नहीं खपे तो इधर रहो ने खपे तो जावा दे सामी ना आई जगह अतुर राशि था को तो

आई पिंड उठन जा का कक थो आई जे घोरा ते ने मने अठो अधी करे विराय दे गा आई पण वरी पण ए लगे तो जे सफा विराय छडन दा तकन पो कोंडा एतरो मारो 1000 13000 महीने में कथा न करंदा पण वाला

0: अच्छा अच्छा तुम बड़ा खाई है फिर नहीं जो पग में पड़ी गई सीढ़ी में रोको नहीं से
1: वस्तु दे रोज जो चालू भी वाको दे खाली को ना देने खा दे पकड़ी उल्टा जाओ

0: हीउ इन पुठियां डोख ॾिठा ॿ टे वार हैरान थियासीं, इन कुरो नथो खपे भाउ, 5 रुपियनि जी आवक समूरी न थई, माल उल्टो मई रहियो। ई पोइ वेके जो कीअं अर्थ न थियो, हीअ पंहिंजी ॾेई ॾिनियूं न 40-45 मई रही
1: लहिणो आज थियो न थोरो
0: रुपया। हाणे मां त 3-4 3.5 खनि रही विया, अञा 3.5 खनि भरिया भाउ।
1: केतिरो भरियो महीने महीने, केतिरो व्याज, केतिरे टके तोखे ॾिनो खयऊं?
0: टके जो कीअं न 5% आई, 3 आई, 2 आई,
1: वधारे
0: व्याज भरियो।

0: ठीक है। मैं घर नहीं रहा पर। हाँ बोल। अरे बने टाइम जुड़े तो ना बने अलाई। हाँ
1: ना
0: टाइम जुड़े ना तो जल जो कम मत हो जी समझी न पुता की रे पूरा जो जानी तो ही
1: हाँ
0: तो पैर आ चो ने सुनो रही यार ठीक
1: क्या आया क्या? अरे
0: है ठीक बस प्या हाल है भान जी दुआ।
1: माइट यार
0: बस क्या आयु क्या ना कथे रहो मजरा इधर
1: जरवाड़ी भी कर दे
0: सायरी कैडी बनानी तो के वफा जी को बेवफाई जी को छाड़ी बनानी
1: बेवफाई शायरी
0: बेवफाई जी बस
1: आओ
0: तो के गायल करे भाई।
1: हो
0: हां
1: क्या तो धंधा करो करो जरा
0: धंधा उठा गाड़ी आला ही तो रेती मेरा कहीं यार जर तो सजे समझे नौ वर्ष बीत में आनो खाली धंधे ही पुरते हैं जरा उठा गाड़ी आला ही रेती मांडा मांडा को लोकनी जरे
1: तो गाड़ी जाती है गाड़ी में लगी हुई है तो गाड़ी जाती है गाड़ी गाड़ी में लगी हुई है तो
0: ना रे गाड़ी ने झंझट के उठा गाड़ी बरोबर ने तेरे ती में आला पे ये गाड़ी में खटारा में का धक्का चले जा।
1: यही बात ना किया है
0: इकने बड़े साधन सीधो ये धंधो बरोबर ना पण को लथे तो मार तारे दे पे हो जे टुकरो बेड़ो तो जे
1: रेती भरो तो ना जड़ी ने कोई पहला तो करूंगा ना गोठम
0: हाँ नहीं तो नहीं मुझे भरे कर गोठन खाली करने का
1: खाली करनी थोड़े पैसे तो उठाओ देन
0: ए कते 100 रुपया कते 150 कते कड़ो 120 और 300 है ना। काहे में 100 रुपया फैक्ट्री में भाग लोकल में समझी कन वजन 100 कड़ो 100 रुपया 400 कते कड़ो 50 वजन नवरे
1: ना
0: कने बिठाओ को फिरने कने हलने कने ना।
1: मैं YouTube पे तो खोल दी शायरी बनाई और गाटा गाटा खोल दी हलाई है YouTube पे शायरी तो जिन खोल के मां पसंद की वान
0: हाँ
1: लाइक किया बोला
0: ठीक यार ये तो जा बार
1: ये मैं आप बार कौन हो जाएंगे तो शायरी लेके तो मुरंगा
0: ओ गड़ो है वो।
1: ओ
0: आए वो जगह जो हमारी चैनल को लाइक करो और शेयर करो फॉलो करो ने चाहे सजो की करो ना बराबर तो हो जो फोटो डाला है फोटो डाला टाइम जुड़े तो ना बना हाला से।